0: Perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: चिकन पॉक्स याद है ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है कभी सोचा भी नहीं था तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है तो शिंगल्स को अंडर एस्टिमेट ना करें
4: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें
5: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
6: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
7: शौकत खानम कराची की तकदीर
8: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें
9: City FM 89
1: You're listening to
10: Non-Stop Hits

0: belong to your song.
1: Only on City FM 89.
2: जहाँ पाँच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है. और ऐसे ही स्पेशल पाँच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस. पाँच दोस्त, एक पैकेज और ढेर सारे डेटा, मिनट्स और SMS की शेयरिंग. अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से. जैज 5G.
3: शौकत खानम, लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन.
4: शौकत खानम, कराची की तकनीर.
5: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें.
6: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो, फोन हो तो 5G वाला. मिलेगा कैसे? बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ. यही नहीं, फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स, हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ. तो फिर फोन हो तो 5G वाला. जैज 5G.
7: The first time at the disco. When you love someone, it's natural, not demanding. Holiday with friends. Retro cinema.
8: Hey, where did we go? Days when the rains came.
7: Through music that speaks to you. Reconnect to your past with me, Amar Nasir, on Retro 89.
9: Every Sunday evening from 7 p.m. to 9 p.m. only on City FM 89.
10: City FM 89. We're playing your song.
1: You're listening to
0: Non-Stop Hits.
11: Fight, thrill of the rage. Crushing my opponent, foot up off the brake. Cleaning all the plates, finna make bang. Finna make history, turn this pain to energy.

0: your song. Only on City FM 89. It's 7 p.m.
1: This time check is brought to you by Jazz.
2: You're listening to City FM 89.
0: Coming up next.
3: Retro 89. City FM 89.
4: Trending today.
5: Anne Hathaway will star opposite Tom Cruise in the next chapter of Days of Thunder. Paramount Pictures has dated the feature film sequel for June 2, 2028, when Tom Cruise and Anne Hathaway will hit the road almost 40 years after the original 1990 Tony Scott film was released. The project will be shot for IMAX screens and released exclusively in theaters for formats including Dolby Cinema and 4DX.
6: City FM 89, we're playing your song.
7: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G।
8: शौकत खानम लाहौर और पेशावर के बाद आपकी एक और डोनेशन
9: शौकत खानम कराची की तकदीर
10: आज ही डोनेट करने के लिए 0800-11555 पर कॉल करें या हमारी वेबसाइट www.shaukatkhanam.org.pk विजिट करें।
11: चिकन पॉक्स याद है? ये शिंगल्स बन के वापस आ सकता है। कभी सोचा भी नहीं था। तकरीबन हर शख्स के जिस्म में शिंगल्स वायरस छुपा होता है, तो शिंगल्स को अंडरएस्टिमेट ना करें।
12: फौरन अपने डॉक्टर से शिंगल्स के बारे में बात करें। खतरे में घिरे हर फर्द को जरूरी नहीं शिंगल्स हो। ये पब्लिक सर्विस मैसेज GSK पाकिस्तान की जानिब से है। मज़ीद मालूमात के लिए अपने डॉक्टर से रुजू करें।
0: City FM 89.

0: That's Kate Bush. That's going out to Zara. I hope you enjoyed that one. Brother, let me pull out your song. I've got a version of Kenny Rogers with Dolly Parton. The late Dolly Parton passed away. Let me see if I can pull that one out. But in the meantime, a quick ad break. I shall be back. Don't go anywhere. This is Retro 89.
1: Perfect antidote to your road rage.
2: City FM 89.
3: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: City FM 89
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
5: You're listening to City FM 89.
6: We are playing your song.
2: You're listening to
7: Retro 89 with Amir Nasir.

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: This time check is brought to you by Jazz.
3: You're listening to City FM 89.
4: Trending today.
5: Anne Hathaway will star opposite Tom Cruise in the next chapter of Days of Thunder. Paramount Pictures has dated the feature film sequel for June 2, 2028, when Tom Cruise and Anne Hathaway will hit the road almost 40 years after the original 1990 Tony Scott film was released. The project will be shot for IMAX screens and released exclusively in theaters for formats including Dolby Cinema and 4DX.
6: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
0: फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @cityfm89
7: फॉर योर इन्फिनिट स्क्रोलिंग रील फिक्स
8: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
3: City FM 89 We're playing your song
1: You're listening to
0: Retro 89 with Amir Nasir.
9: Just a minute after 8 o'clock, which means 60 minutes of Retro 89. Boy, time flies, but I'm on till 9 p.m., so plenty of music coming up. Emma Javad, I've got America's Don't Cross the River. That's a great song, by the way. You've put down Eagles. I've also got Eagles anyway. So I'm going to play Don't Cross the River for you, and I've got an Eagles song. But right now I'm going to play you Donna Summer. The late Donna Summer died way, way too young. This is a song that's not really played a lot. It's called Come With Me.

0: 89.9
1: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वहीं लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
2: We are
3: City FM 89
2: You're listening to
3: Retro 89 with Amir Nasir.

0: perfect antidote to your road rage.
1: City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
4: You are listening to City FM 89.
5: We are playing your song.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
1: सिटी 89
6: वी आर प्लेइंग योर सॉन्ग
1: यू आर लिसनिंग टू
7: रेट्रो 89 विद आमिर नसीर

0: along to your song.
1: Only on City FM 89.
2: जहाँ पांच दोस्त मिल जाएं, वही लाइफ है और ऐसे ही स्पेशल पांच के लिए जैज V5 शेयरिंग पैकेजेस पांच दोस्त एक पैकेज और ढेर सारे डेटा मिनट्स और SMS की शेयरिंग अपनी पसंद की V5 ऑफर चूज करने के लिए डायल करो *400# या सब्सक्राइब करो सिमोस ऐप से जैज 5G
3: सिटी FM 89
4: फोन अपग्रेड करने का सोच रहे हो तो सुनो फोन हो तो 5G वाला मिलेगा कैसे बस जैज एक्सपीरियंस सेंटर या जैज ई स्टोर पर जाओ और नया 5G वाला फोन अपना बनाओ यही नहीं फुल पेमेंट पर पाओ साथ में फ्री डेटा बंडल्स हैंडसेट इंश्योरेंस और बहुत कुछ तो फिर फोन हो तो 5G वाला जैज 5G
5: 89
6: We're playing your song
7: The old commute is broken. We're just here to help you override it.
8: ABD. The rush hour. 5 to 8 p.m.
9: A new era begins.
1: City. FM. 89.
10: You're listening to
0: Non-stop hits.